बिल्कुल गिरिलाज मो बन्नान्यो अब्दुल्लाही उमर बाबर हिरुक यात मालिक बॉय खक उरे न्याने खाला इब्राहिम अलहाजी मूसा वीते चेन इब्राहिम मूसा

बता दियो मिया यो तो कोठ है गोठ है बता दियो सुन कोठी है उन ले उन साए मनीषा जो माई पूछा